ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

हार दिलिए खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार असी बाल अथरे हाँ साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता असी वाले अत्तरे हाँ साडिया मूड डिपेंड ने मत्ता सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था सदके मुड साडे दे आगे करके वेलियां सत्था कन लाके सुन लैनी कन लाके सुन लै अजे हथ बन के तेनू दसा साडे खेत आबरू ने साडे खेत आबरू ने साडे खेत आबरू ने मिट्टी मां वर्गी साडे खेत आबरू ने मिट्टी मां वर्गी जिदे नाल सानू जन वध के प्यार दिलिए खैर मना लैनी आगे सच के सिंह सरदार दिलिए खैर मना लैनी आगे सच के

एक बार ही मिलती है ये जिंदगी, काम आना किसी के है एक बंदगी, रोने वालों को जो

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है।

तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने, छोड़ दे तू अगर सारे शिकवे गिले। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने।

सदा उसकी ही मौज में खुश रहे, जो सदा उसकी ही मौज में दास सच्चा, वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में दास।

वैरी मीत च फर्क न कोई, हरख सोग दोए सम कर जाने। तेरे तोतले बोल प्यारे, हर इक नू पे देन सहारे।

0: डिसेंट मान जाएगा कोई बड़ा बच्चा, कोई आंदा कॉलेज आओ कहता किसी डिसेंट मान, मैं क्या तू बेटा चंगी पढ़ाई कर ले, चंगे अपने सारे सोसाइटी नाल जुड़, डिसेंट सिटीजन बन जा, डीसी आप पे बन जाना। सो बेसिकली डीसी बनना या सिविल सर्विस जाना एक एक बहुत ही एक मल्टी प्रॉन्ग चीज़ का एक प्रॉन्ग है। साढ़े को अगे करियर से इन्नी ऑप्शन ने, स्पोर्ट्स परसन ओलंपिक से तुम कुछ कर लो, असी देखिए 2016 के ओलंपिक के जेडे भी मेडलिस्ट है अज वो कितने पहुँच चुके हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: थोड़ी जी
1: बिल्कुल
0: मेहनत करके तुसी अपने देश का नाम किन्ना अगे ले जा सकते हो। तुसी किसी को एक्टिंग का शौक होंगे, कोई बच्चा इस तरह का इनहेरेंट टैलेंट होंगे हैगा,
1: बिल्कुल
0: तुसी एक्टिंग
1: बिल्कुल
0: लाइन से चले
1: हाँ
0: जाओ। सिंगिंग का शौक है अपने अपने ही एरिया से, किन्ने सिंगर तुहाड़े थ्रू ही मुझे पता
1: वाकई
0: लग
1: हाँ
0: गया
1: जी हाँ
0: सीगा।
1: जी बिल्कुल जी
0: तो किसी दे कोई भी टैलेंट हैगा जिन्होंने वो एक्सप्लोर करे माइंड का, असं बिल्कुल 5 तो 10% आप एक्सप्लोर करते हैं, आप माइंड
1: हाँ
0: होर
1: जी
0: एक्सपेंड करके एक्सप्लोर करिए, तुसी कितने दे कितने पहुंच सकते हो किसी भी लाइन दे।
1: बिल्कुल सर बहुत वधिया लग रहा है गला बातें करके। आपां एक छोटा जिहा ब्रेक लवांगे, ब्रेक तो बाद फिर आपां हाजिर होवांगे। दोस्तों स्टे ट्यून्ड, खुश रहो, चेहरे ते एक मुस्कान बना के रखो ते सुनते रहो प्रोग्राम। आपां हुणे दोबारा तुहाडी सेवा च हाजिर हुंदे हां।
2: जलंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से स्थित दशमेश गर्ल्स कॉलेज चक अल्ला बख्श मुकेरिया जिला होशियारपुर का कैंपस 6 एकड़ जमीन में फैलिया हुआ है, जिस विच बीए, बीसीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी फैशन डिजाइनिंग, बीए, बीएड इंटरग्रेटेड कोर्स 4 साला, इसके अलावा एमए हिस्ट्री, हिंदी, पंजाबी, म्यूजिक वोकल, पोलिटिकल साइंस, एमकॉम और पीजीडीसी कोर्स चल रहे हैं। विद्यार्थियों लिए आधुनिक ढंग तैयार केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एसी कंप्यूटर लैब्स, आईसीटी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, म्यूजिक दी लैबोरेटरियां मौजूद हैं। मेरिटोरियस अते यूनिवर्सिटी पोजीशन लैन वाले विद्यार्थियों नू मुफ्त पढ़ाई, वजीफे अते इनाम अते अनाथ विद्यार्थियों लिए फीसां विच रियायतां दित्तियां जांदियां हैं। विद्यार्थियों दे खेडण लिए खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, गतका, एथलेटिक, बॉल बैडमिंटन ग्राउंड उपलब्ध हैं। स्मार्ट क्लासेस दी सुविधावां दित्तियां जांदियां हैं। लाइब्रेरी विच वख वख विषयां ते 52 जर्नल उपलब्ध हैं। विद्यार्थियां हर साल यूनिवर्सिटी विच वधिया पोजीशनां हासिल कर रही ने। जोनल इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल विच बेशुमार इनाम हासिल करते हुए कॉलेज ने होशियारपुर जिले विच सिक्ख्या दे खेतर दे नाल नाल सभ्यतारक खेतर विच भी एक नवी पछाण बनी।
1: हाँ जी दोस्तों स्वागत है एक बार फिर ब्रेक तो बाद। आपां गल्लां कर रहे हाँ सिक्ख्या ते रुजगार प्रोग्राम तहत बच्चों का बेहतर भविख किवें बने। तो साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल जी IAS जो बतौर SDM दसूआ विच तैनात ने, ते बच्चों के भविख नूं लै के फिक्रमंद ने, चिंतित ने, ते उन्हां नूं बहुत वधिया उसारू सीधा दे रहे ने। और डॉक्टर साहब आपां जिवें पहलां गल कर रहे सीगे कि पेरेंट्स के प्रैशर नाल बच्चा करे कुछ, जां कई बार वह पीयर ग्रुप्स अपने नाल दे दोस्तां नूं देखा देखी कि ताए दी धी चली तो मैं भी क्यों रवां कली, ते अपने दोस्तां ने उधर कोई ज्वाइन कर लिया उधर चल जाते हैं। ये किदां दा फैसला बच्चे जिहड़ा इहदा प्रभाव पै सकदा उहनां ते?
0: कई बारी इन्हां गल्लां दा चंगा प्रभाव पैंदा हैगा बच्चों दे, कि कई बारी उन्हों कोई गाइडेंस देने वाला नहीं हुंदा, बट एक सपोर्ट सिस्टम तुहानू जे मिल जांदा आइदर थ्रू पीयर ग्रुप और पेरेंट्स और टीचर्स, तां एक चंगे राह नूं तुर पैंदा जे उह पुल ऑफ कर सकदा हैगा। बट ये अल्टीमेट डिसीजन जो 11वीं च होंदा बच्चा, 16-17 साल का होंदा, आप टैलेंट की गल कर रहे थे बच्चों की,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: अल्टीमेट डिसीजन ये बच्चे का है, उस 16 या 17 साल के बच्चे का है, मुंडे या कुड़ी का है, कि वो उस फील्ड में एक कहते इंसाफ दे पाऊगा,
1: हाँ
0: जी
1: जी हाँ
0: जी
1: जी
0: राह
1: हाँ
0: वो
1: जी
0: तुर पाया
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: जे उन्होंने लगता है कि मैं इन्नी मेहनत कर सकता है या मैं इन्होंने इंसाफ दे सकता है, वो बिल्कुल उन्होंने उस लाइन में टो द लाइन जिन्होंने आप कहते हैं
1: हाँ जी हाँ
0: वो
1: जी
0: कर
1: हाँ जी
0: सकता है। जे उन्होंने लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ है, तो मैं सिर्फ देखा देखी आ रहा
1: उधर
0: हूँ,
1: आ गया है
0: उस वेले देखो अकेला डिसीजन लेना, कई कई बच्चे ले भी लेंगे ने,
1: हाँ
0: बट
1: जी हाँ
0: उस
1: जी
0: वेले अगेन जे उन्होंने कोई कोई सीधे राह पा दे जिन्होंने आप
1: जी
0: कहते हैं कि सीधे राह पाना,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: पेरेंट टीचर उन्होंने कह दे कि भाई दिस इज योर कैलिबर
1: ओके
0: कैलिबर तुसी ये कर सकते हो, ये तुहाडे तो नहीं हो सकता। जो उस वेले
1: जी
0: उन्होंने क्लियर क्लैरिटी ऑफ माइंड हो जाए तो वह काफ़ी जो आने वाले जो साल है, इनफैक्ट आने वाला पूरा करियर वो जो बन सकता है या बिगड़ सकता है।
1: बिल्कुल
0: ये
1: बिल्कुल हाँ
0: अगेन स्कूल साडा एक सिस्टम जो टीचिंग का सिस्टम है वो
1: जी हाँ
0: इन्ना
1: जी
0: स्ट्रोंग होना चाहिए है। टीचर्स नूं कई बारी नहीं पता होंदा कि अगर करियर दे विच बच्चे तो की कराना हैगा, थोड़ा उन्हां नूं भी ध्यान देना चाहिए अपने जिहड़े विद्यार्थी है, अपना जिवें आपदा बच्चा होवे
1: हाँ जी बस
0: वो
1: उन्हें ही
0: समझ के
1: चाहिए।
0: जे
1: हाँ जी हाँ
0: उन्हां
1: जी
0: नूं काउंसल कर सकदे ने ते बहुत उन्हां लई वधिया
1: बिल्कुल
0: रहिंदा, वरदान साबित हो सकदा ये वाली
1: बिल्कुल
0: गल।
1: बिल्कुल सर बिल्कुल जी, ये तो गल ठीक है जी। जे उन्हां नूं मौके ते कोई गाइडेंस मिल जाए, तो एक आप आम सुनते रहने कि जेडे दूसरे देश आ

के सुटते प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए, जदो समय दा चक्कर चलदा ए, जदो समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा,